श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहाँ की बात करूँ तो मैं तो आपको सदा कहता हूँ कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है, ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहाँ तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहाँ पर उपासक बनकर रहिए, यहाँ पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है, अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूड मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर दाहू, और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्ता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाड़ी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को, ना करो तो भी मन दुख

साधन का पथ है भाई, बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरीबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। अब वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भैये, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान।

और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा? कितना क्षण भंगुर ये देह है। कलिकाल कुठार

इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले रि रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहू कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kutch, Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आकर के, है ना। जैसे ही हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना, तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां

0: से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी सी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए में ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ मेरी, नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मुझे गड़बड़ लगती है, वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी तो दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी दे दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा लगा दो बियर लगा, अरे ये करो कर, बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे ऐसा नहीं करे, लटाएंगे और कई बार खुद भी लेट गया और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती कर दी, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं। अपने आप को ये बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाएगा। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार। पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो। आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना?
1: माय क्वेश्चन इज दैट what how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
0: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूं, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे? समझ गए ना, वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज, हम खुद भी मर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो? ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं होगा। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो, और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जाम्पल दिया था, एक रोल का एग्जाम्पल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम के जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे, जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों, मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना, कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर दिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब वो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना, खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना, जो हमारे थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है, सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है, आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है, कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है, आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में, वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है, जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो, नहीं तो आप करोगे क्या, अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं।

से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार हो गए उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो, क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं। अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी है ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं, चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, तेरी डी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए, देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है, जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है, खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो, ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो, बुरा लगेगा सुनने में, पर चिंदी बन जाते हो, समझ ही 5-10 हजार रुपए वाली बन जाती है, उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है, सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं, आ रहा है ना पकड़ में, चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है, समझ गए, आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है, ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी है, क्या फर्क पड़ता है, खेल है, बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे, कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली, अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो, आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है, अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है, अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत कर, बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाला, क्या हो गया, खेल है, अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली, अरे मजा आ गया, खेल है, यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है रियल लाइफ में। जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे, लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना, बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या, अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं, सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान है।

देख सकते हैं तेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल। बहुत आसान है, अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना? मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार? इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में सबकी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये गेम है, बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ? इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी चाहिए, ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए? तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या? मैं बचा, ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता, कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं, तो तब ये खेल कैसा होगा, समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हाई सिग्नल पर वो आपको रोक लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: स्ट्रेस।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

आज ही अंजलि। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आज अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
4: इरशाद,
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
4: बाकी सब फर्स्ट क्लास है।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया और स्कैम ये है, शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से। बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपीके फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपीके फाइल। तो आखिर ये एपीके फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपीके फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए एप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी आपने सोचा एक छोटा सा सॉरी कितनी कमाल की चीज करता है हमारी लाइफ में? जितना भी खराब रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन एक सॉरी उस रिलेशनशिप को हील कर देता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और अगर बात करें सॉरी की, तो सॉरी बोलना आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये जानता है, सबसे पहले तो हमें ये देना ये याद दिलाता है कि जो ईगो है ना वो बहुत छोटा है, यानी कि हमारा रिलेशनशिप हमारे ईगो से बड़ा है। सेकेंड थिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है सॉरी बोलने से, हीलिंग और पॉजिटिविटी आती है। और कभी कभी ना हम अननोइंगली किसी को हर्ट कर देता है, ऐसे में एक जेन्युइन अपोलॉजी बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। और सॉरी बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है वो आज मैंने आपको बताया ही है। लेकिन आपको पता है, स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते जो कभी गलत नहीं करते, स्ट्रॉन्ग वो है जो दिल से सॉरी बोल सकते हैं। सो इसलिए आज एक चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर किसी से बात पेंडिंग है तो मे बी टूडे इज द राइट डे टू फिक्स इट। सॉरी बोलकर आज का दिन फिर से एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप को फिर से हील कीजिए, एक और मौका दीजिए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
0: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आ गई हूँ। और यार जब बात करते हैं ना डेली रूटीन की, तो कितना सारा काम करते हैं, लेकिन उस रूटीन में कभी आपने सोचा है कि एक ब्रेक लेना कितना ज्यादा जरूरी है? आई नो काम इम्पोर्टेंट है, पर रिचार्ज होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज मैं एक स्टडी लेकर आ गई, एंड स्टडीज के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप वर्क स्ट्रेस एंजाइटी और बर्नड आउट को इंक्रीज कर सकता है। सो भाई यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर शॉर्ट वेकेशंस या ब्रेक लेना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपना एक ट्रिप छोटा सा प्लान कर लीजिए। अब बात करें इस नॉन स्टॉप वर्क के इफेक्ट की, तो भाई सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टेंट फटीग को इंक्रीज करता है, पुअर स्लीप और साथ ही इमोशनल एग्जॉशन, ये सारी चीजें होती है जब आप नॉन स्टॉप काम करते हो, स्पेशली हाई प्रेशर जॉब्स में ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉमन हो जाती है भाई। सो वेकेशंस के फायदे तो हैं, हमारा माइंड फ्रेश करता है, क्रिएटिविटी और फोकस को इम्प्रूव करता है, एंड साथ ही प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और मूड भी हैप्पियर फील करता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मशीन भी रेस्ट करती है, लेकिन हम तो इंसान है तो हमें तो डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। और वेकेशंस का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ा सा ब्रेक ही इनफ होता है। सो वर्क हार्ड करिए पर रिचार्ज होना मत भूलिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: कैसी?
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
2: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

क्या कभी सोचा है कि एक क्लिक, बस और बस एक क्लिक, और पूरा फोन हैकर्स के कंट्रोल में जा सकता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि साइबर क्राइम किस तरीके से बड़ी आसानी से हो सकता है। आजकल अगर बात करूँ ना, तो मार्केट में एक नया स्कैम आ गया, और स्कैम ये है कि व्हाट्सएप पर फेक लॉकडाउन नोटिस PDFs बहुत जोरों से वायरल हो रहे हैं, जो बिल्कुल ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिस की तरह दिखता है। फिर क्या, लोगोस भी सेम है, फॉर्मेटिंग और अर्जेंट लैंग्वेजेस के साथ ये PDFs आए हैं सामने। लेकिन पता है यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की फाइल आपको मिलती है तो ये पूरी तरह से डेंजरस हो सकती है। सो इस तरह की फाइल से आपको पूरी तरह अवेयर रहना है। सबसे पहले अगर बात करें तो इस फाइल से क्या नुकसान आपको हो सकता है, पहले तो आपका फोन हैक हो सकता है, पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, साथ ही बैंकिंग डिटेल्स रिस्क में आ सकती हैं। सो अब बात करते हैं कि आखिर बचना कैसे है। जितने भी अननोन PDF या फिर लिंक्स हैं, उन्हें ओपन ना करें, फॉरवर्डेड मैसेज ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, ऑफिशियल अपडेट्स और ट्रस्टेड गवर्नमेंट सोर्सेज को ही चेक करें, साथ ही फोन सिक्योरिटी और अपडेट्स ऑन रखें। और इसी के साथ बस ये कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में हर अर्जेंट मैसेज सच नहीं होता, अक्सर फियर और पैनिक क्रिएट करके ही स्कैमर्स लोगों को ट्रैप करते हैं, इसलिए कहा जाता है अलर्ट रहिए, वेरीफाई करिए और सेफ रहिए। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल। तो

0: तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: झटका फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
0: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें।
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरियाज है ना वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना वो हमको नहीं पता होता। तो कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई की वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ।

0: की अपने शरीर के प्रति भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: जी।
0: राइट, तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो
1: जी,
0: उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉइल होने दो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉइल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज़ वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक आल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद, बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है। अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है
1: जी,
0: तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप देखना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी करूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना, एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
1: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तब ये स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा होता, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स हेल्दी ड्रिंक्स, जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता जी, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है
0: जी,
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। तो दुनिया हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खा के आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के को मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को। तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज हम इनसे बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन सीजन की। तो राधिका जी, ये बताइए, मॉनसून में डाइजेशन इश्यूज सबसे ज्यादा होते हैं, उनसे बचने के लिए कोई प्रैक्टिकल टिप जो हमारे लिसनर्स घर बैठे कर सके और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव हो?
1: अगर आप इस मौसम में हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है इसलिए इन्फेक्शन भी जल्दी कैच है, ठीक है। अगेन इम्यूनिटी वीक इसलिए है क्योंकि हम आउटसाइड फूड्स, कितना भी हम कह लें हेल्दी फूड, घर के अंदर माँ चार दिन बना के दे देगी, बच्चे खा लेंगे, बट एट द एंड उनको बाहर के वो जो मसाले, मिर्च और स्ट्रीट फूड, इनकी हैबिट और वो इन्फेक्शियस है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया स्टिक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी इम्यूनिटी वीक है और आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लोटिंग होती है इस टाइम पे। अच्छा, ब्लोटिंग भी हर किसी को ना, कोई किसी को इस मौसम में एसिडिटी हिट करती है, किसी को ब्लोटिंग हिट करती है। डिपेंड्स कि आपकी जो बॉडी है वो वात पित्त या कफ में से किस चीज को हिट करती है। हर किसी का बॉडी को एक ही तरीके से नहीं हिट करती है, राइट। तो इम्यूनिटी वीक आपकी तीनों ही वे में हो सकती है, कि किसी को एसिड बना रही है कोई चीज की, आपने जैसे खा लिया, और क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है वो गर्मी में बहुत पीकती है, इवन विंटर्स में भी वो अगर आप ढंग से खाओ वो प्रॉपर वर्क करते हैं, लेकिन जो ये मॉनसून वेदर होता है ना, इसके अंदर वो आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करे, राइट
0: जी।
1: तो इस मौसम में वो इन्फेक्शन इसलिए बहुत जल्दी कैच करता है क्योंकि हमारे खाने की हैबिट्स ठीक नहीं होती है इस टाइम पे, इम्यूनिटी को हिट कर देता है। और फिर जो ये हेल्दी सिरप्स है ना, ये आपको बैलेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आप प्रॉपर एक हेल्दी वे में लो, आप दलिया, खिचड़ी, ये सब चीजें अपने एटलीस्ट वन मील में तो रखो, मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, वो बहुत आपको हेल्प आउट करते हैं इस चीज को हैंडल करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज आपने हमारे लिसनर्स को बहुत फ्रूटफुल बातें बताई हैं, जो हमें इस सीजन जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और बातों का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है, लेकिन कल फिर से मिलेंगे आपके साथ, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इस बदलते सीजन में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए पैरासोट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: आए शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ है और आज से लेकर के वीकेंड तक बारिश की अच्छी संभावना, क्या आसार पूरे पूरे हैं, बारिश होगी और पूरा वीक बेहतरीन होने वाला है, गर्मी से निजात मिलने वाली है, जहाँ इस वक्त AQI भी काफी कंट्रोल्ड नजर आ रहा है, जहाँ AQI पिछले दिनों जब 160 तक पहुंच गया तब 85 यानी कि 100 से नीचे भी आ गया, जो कि चलिए अच्छी बात है। और बारिश का मौसम है, इस रेनी सीजन में प्लांटेशन भी ज़रूर कीजिए, जो कि हम पौधे लगाएं, ताकि पौधे लगाने से कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी सुंदरता मिले, इन्वायरमेंट सुधरे और AQI भी और ज़्यादा कंट्रोल होता नजर आए। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत चर्चा।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। जी हाँ, अब नेशनल जो अवार्ड्स होते हैं यानी कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए, ऐसे बच्चे जो कि प्रतिभाशाली, खुद आवेदन करने या अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बजाय स्कूल्स और निजी स्कूलों की जिम्मेदारी तय की गई है कि अपने स्कूलों में छिपी प्रतिभा की पहचान करें और उन्हें नेशनल लेवल तक पहुँचाएं। नई गाइडलाइन के तहत स्कूलों को ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर रजिस्ट्रेशन कराने के डायरेक्शन दिए गए हैं, जहां केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी भी बनाया गया है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, तो आप सबको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना खुद नहीं पड़ेगा, स्कूल्स ही आपके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत चर्चा।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हूँ लेगर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, जहाँ आए दिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट ट्रैफिक ताओ मिल करके सबको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए अवेयर करते नजर आते हैं, कभी गुलाब देते तो कभी हेलमेट देते। जहाँ देखिए फोर व्हीलर्स की अगर बात की तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, टू व्हीलर्स हेलमेट जरूर पहने, चाहे आगे हो चाहे पीछे सेकंड सवारी क्यों ना बैठी हो। साथ ही बात की जाए तो देखिए हम सब जानते हैं कि रेड लाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है, रॉन्ग साइड ना जाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। हाईवे पर अगर किसी भी वजह से आपको कार पार्क करनी पड़ रही है तो प्लीज पार्किंग लाइट ऑन करके पार्क करें एमरजेंसी केसेस में, और कहीं भी ऐसा है जहां लाइट हो वहीं पे पार्क करें जिससे कि पीछे आते हुए व्हीकल्स को कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक रूल फॉलो करना सिर्फ हमारा एक यूं ये नहीं कि ट्रैफिक रूल है तो फॉलो करने, हमारा फर्ज बनता है, हमारा ड्यूटी बनती है अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: 69.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

उसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फिल्म। यहाँ दोस्तों बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारे से कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कहीं होगा ट्रेलर टीजर लॉन्च तो कहीं होगा नए गानों का धमाल। नई जोड़ियां डायरेक्टोरियल डेब्यू से लेकर के सिल्वर स्क्रीन के किस्से कहानियों के साथ चर्चाएं होंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म की। हिंदी पट्टी से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के किस्से कहानियां तो कहीं होगा हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिल का भरपूर डबल डोज। बताऊंगा साथ ही आपको आज के सिनेमा के कैलेंडर का कौन सा है वो किरदार जिसकी करने वाला हूं मैं वो बहुत ही चर्चाएं और उनकी बढ़िया बढ़िया कहानियों की बातें। लेकिन हाँ ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के कैलेंडर में ले जाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आगे बढ़ते हुए एक और बढ़िया कहानी के बारे में, नागबंधम, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ और अब इंतजार है तो इस कहानी की रिलीजिंग का। जो है फैंटेसी एक्शन फिल्म में विराट, नाभा नतीश, ऐश्वर्या मेनन, जगपति बाबू और महेश मांजरेकर शामिल है। 3 जुलाई को कहानी को पैन इंडिया मैथोलॉजिकल फैंटेसी के साथ स्ट्रीम किया जाने वाला है, जहां अभिषेक नामा ने लिखा और डायरेक्ट किया इस कहानी को, जहां पर विजुअल्स को बेहतरीन तरीके से लॉन्च किया गया। मेकर्स ने अगर बात करें तो इस कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, एक्शन ड्रामा के साथ फैंटेसी भी इंक्लूड कर दिया। अगर माइथोलॉजिकल फैंटेसी कहानी क्या धमाल मचाने वाली है, ट्रेलर को तो प्यार मिलता नजर आए, कहानी क्या उतनी उम्मीदों पर खरी उतर पाई, ये तो 3 जुलाई को ही पता चलेगा। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां हम बात करते हैं टॉक्सिक के बारे में, फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की रिलीज जो है फाइनली अब सबके सामने आ गई। 26 अगस्त 2026 को इसको ऑफिशियली रिलीज किया जाने वाला है, लॉक कर दी गई है थिएट्रिकल रिलीज डेट। फिल्म की डेट पहले मल्टीपल बार शिफ्ट हो चुकी है लेकिन फाइनली अब इसे कहा जा रहा है इसे शिफ्ट नहीं किया जाने वाला। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया, कहानी में नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत नजर आने वाले हैं। टॉक्सिक बढ़िया कहानियों में से एक होने जिसका इंतजार सबसे ज्यादा करना पड़ा और अब देखते हैं इतनी बड़ी स्टार का जहां पैन इंडिया कहानी की अगर बात की साउथ और बॉलीवुड के स्टार्स एक साथ मिलकर के कुछ धमाल यानी कि एक्शन लेकर के आने वाले हैं जिसका इंतजार हर किसी का। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेगी, सो पहले एक और ट्रैक को

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ हम बात करते हैं रणवीर सिंह के बारे में, जहाँ धुरंधर से लगभग 325 करोड़ कमाए और इस क्लेम के बेसिस पर उन्हें इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर भी बताया जा रहा है। लेकिन वैसे ये फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ और ट्रेड प्रॉफिट शेयरिंग एस्टिमेट्स पर बेस्ड कहा जा रहा है कि रणवीर ने फैट फी के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल चूज किया, जिसमें थिएट्रिकल बोनस और नॉन थिएट्रिकल राइट्स भी इंक्लूड थे। इस स्ट्रक्चर की वजह से उनका एस्टिमेटेड शेयर लगभग 325 करोड़ तक पहुंचा। ऐसा कर रजनीकांत जैसे स्टार्स से कंपेयर किया गया और इंडियाज हाईएस्ट पेड एक्टर रणवीर बन चुके हैं। कहा जा रहा है फिर भी ये इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं, वेरीफाइड सैलरी डिस्क्लोज नहीं, बट 325 की जगह 300 करोड़ भी हों तो यार बॉस इतना बड़ा अमाउंट फॉर वन मूवी, जिस मूवी ने खुद हजारों करोड़ रुपए कमाए, एक बहुत बड़ी बात। बाकी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से तमिल इंडस्ट्री में, जहाँ रजनीकांत, विजय और कमल हसन सबसे ज्यादा फी लेने वाले स्टार्स के ग्रुप में आते हैं। विजय और रजनीकांत टॉप ब्रेसलेट में है, जबकि कमल भी हर रेमुनरेशन रेंज में कोचिन है। जहां रजनीकांत 125 से 270 करोड़ तक की फी लेते हैं, तो वहीं थलपति विजय 200 से 250 करोड़ और कमल हसन 100 से 150 करोड़ तक मेजर प्रोजेक्ट्स में। ये एग्जैक्ट डिस्क्लोज सैलरी नहीं, बट हाँ एक रफ अमाउंट है कि एस्टिमेटेड इतना जरूर एक कहानी से चार्ज करते नजर आते हैं। इतने बढ़िया स्टार, इतनी बढ़िया फैन फॉलोइंग, किरदार एक्टिंग दमदार है, तो बॉस इतनी फीस तो बनती है और कई कहानियों में तो ऐसा चार्ज कर जाते हैं कि क्या ही बताए। लेकिन ऑल ओवर फिर भी रणवीर 325 करोड़ ले जाते हैं कहानी के यहाँ मुकाबले में, इसलिए नंबर वन पर ही बने हुए हैं बॉलीवुड क्या पूरे इंजन सिनेमा हाउस की अगर बात की जाए।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां हम बात करते हैं ओटीटी के बारे में, जहां ओटीटी पर कौन कौन सी कहानी को आप लुत्फ उठा सकते हैं बताता हूं आपको। राजा शिवाजी से लेकर के हाउस ऑफ ड्रैगन 3 के लुत्फ भी उठाया जा सकता है। वहीं ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2, जब ग्राम चिकित्सालय ने पहले ही अच्छा खासा प्यार बटोरा और सीजन 2 क्या धमाल मचा रहा है ओटीटी पर, अब आप लोग ही बताएंगे। ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2 तो दृश्यम 3 वहीं बात की जाए, सेव द टाइगर्स, अधिरति अलाया बाजू गायब है, दर्जन सी सीजन 2, ये सारी कहानियां ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जा चुकी है, जिनको लुत्फ उठाई। इन सभी कहानियों बेस्ट ऑफ द कहानी आपको कौन सा लगी, बेस्ट ऑफ द सीजन कौन सा लगा जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: कहाँ चले हैं? ठंड पे गई है, कार चलिए
1: नहीं, पहले जब

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: क्या?
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों अब हम बात करते हैं अरविंद स्वामी के बारे में। फिल्मी फ्लेवर में जहां सिनेमा के कैलेंडर की चर्चा करें तो आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अरविंद स्वामी, जिनकी पर्सनैलिटी में एलिगेंस है, एक्टिंग में क्लास और

एक एक्टर जिन्होंने कम फिल्में की लेकिन हर फिल्म से अपनी अलग पहचान छोड़ी। आज बात कर रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे ग्रेसफुल स्टार के बारे में, बहुत ही चर्चा करूंगा आज क्योंकि इनका बर्थडे भी है। लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा और कुछ खूबसूरत से गाने।

जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

ला ला ला। इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं आज बेहतरीन स्टार के बारे में अरविंद स्वामी। 1992 में लेजेंडरी फिल्मेकर मनी रत्नन ने एक नया चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। फिल्म रोजा। फिल्म की कहानी है रहमान का म्यूजिक और अरविंद स्वामी की सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी फैन फॉलोइंग बनाई। उनकी स्माइल, सिंपलिसिटी और नेचुरल एक्टिंग ने 90s का रोमांटिक आइकन बना दिया। इस फिल्म के बाद बात करते हैं बॉम्बे की। 1995 में रिलीज की गई जहां शेखर का एक्टर आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे मेमोरेबल रोमांटिक रोल्स में गिना जाता है। फिल्म का म्यूजिक इमोशनल उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई। फिर बात करें मिनसारा के बारे में, चाहे थानी और उवन के बारे में कहानियां उनको बहुत बेहतरीन स्टार में गिना जाता। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी उससे पहले एक और ट्रैक

मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: बाजू।

0: यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है, बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आगे बढ़ते हुए, जहां अरविंद स्वामी उन चुनिंदा एक्टर्स में हैं जिन्होंने रोमांटिक हीरो और स्टाइलिश विलन दोनों रोल्स में ऑडियंस का दिल जीता। थानी में उनका सिद्धार्थ अभिमन्यु को कैरेक्टर साउथ सिनेमा के सबसे क्लासिक विलन्स में गिना जाता। आज भी उनकी काम, डायलॉग डिलीवरी, डिग्निफाइड पर्सनालिटी और एफर्टलेस एक्टिंग फैंस को बहुत पसंद आती हैं, और शायद इसीलिए 3 दशकों के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट दोनों बरकरार है। अरविंद स्वामी और बॉम्बे के रोमांटिक हीरो के रूप में पसंद हैं या थानी के स्टाइलिश विलेन के रूप में, बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेर बातें। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट
1: सरकार,
2: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
3: ओह नो,
1: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
2: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

म्यूजिक की दुनिया में सिंगर्स बहुत आते हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो गाने से पहले ही पहचान ली जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और मैं जिस आवाज की बात कर रहा हूं वो है शंकर महादेवन की। 1967 में मुंबई के एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए शंकर महादेवन बचपन से ही म्यूजिक के करीब थे। सिर्फ 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। जब उनके दोस्त स्कूल के बाद खेलने जाते थे तब शंकर सुर और ताल की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। वो उन लोगों में से नहीं थे जो बचपन से डिसाइड कर लेते हैं कि सिंगर ही बनना है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया। दिन भर ऑफिस का काम और फिर म्यूजिक की प्रैक्टिस, एक तरफ सिक्योर करियर था दूसरी तरफ पैशन। और कई साल तक उन्होंने दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, फिर दिल की आवाज बार बार एक ही बात कह रही थी, म्यूजिक ही उनकी असली मंजिल है। हर किसी के पास टैलेंट होता है, लेकिन अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, और ये हिम्मत थी शंकर महादेवन के पास। और आगे कैसे उनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।
1: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

बातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले

कभी कभी एक गाना आर्टिस्ट को फेमस नहीं बनाता, एक गाना आर्टिस्ट को फिनोमिना बना देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं शंकर महादेवन की। ईयर 1998, एक ऐसी एल्बम रिलीज हुई, उस एल्बम का सबसे बड़ा गाना था ब्रेथलेस, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। लोग बार बार कैसेट रिवाइंड करके सुन रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, कुछ लोग कह रहे थे कि एडिटिंग का कमाल है, लेकिन सच ये था कि शंकर महादेवन ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकल कंट्रोल और ट्रेनिंग का डेमोंस्ट्रेशन दिया था। अचानक से हर जगह उनका नाम होने लगा, रेडियो स्टेशन पर, टीवी इंटरव्यूज में, म्यूजिक मैगजीन्स में, और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये सिंगर है कौन। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि शंकर ने अपनी सक्सेस को कभी भी सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक गाना करियर बना सकता है, लेकिन करियर को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ब्रेथलेस ने उन्हें फेमस जरूर बनाया, लेकिन उन्हें लेजेंड उनकी कंसिस्टेंसी ने बनाया। और कैसे वो सिंगर से म्यूजिक कंपोजर बने, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: जा रहा हूँ। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओह नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अले, दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कुछ लोग एक फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्शन बदल देते हैं। ब्रेथलेस के बाद शंकर सिर्फ सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसी दौरान उनकी पार्टनरशिप बनी एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा के साथ और जन्म हुआ शंकर एहसान लॉय का। ये सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं था, ये बॉलीवुड के म्यूजिक लैंडस्केप में एक रेवोल्यूशन था। साल 2001 में दिल चाहता है रिलीज हुई फिल्म ने यूथ सिनेमा को बदला और उसका म्यूजिक उसने बॉलीवुड के साउंड को मॉडर्न बना दिया। फिर आई कल हो ना हो, एक टाइटल ट्रैक जो आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। फिर आई रॉक ऑन, रॉक ऑन ने म्यूजिक को मेनस्ट्रीम बनाया। भाग मिल्खा भाग ने मोटिवेशन को मेलोडी में बदल दिया। हर फिल्म के साथ उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। उन्होंने गाने कंपोज नहीं किए, उन्होंने पूरी जनरेशन के इमोशंस को साउंड ट्रैक दिया। और कैसे उनको अवार्ड से नवाजा गया करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
4: अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ?
3: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
5: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पुम्मी बहन जी।
2: बोलो सिमी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

अवार्ड शेल्फ पर रखे जा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दिल में रखी जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी।

हर जनरेशन को कुछ आवाजें मिलती हैं, जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। शंकर महादेवन उन आवाजों में से ही एक हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं द लेजेंड शंकर महादेवन की। आज के एरा में ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। एक गाना आता है, वायरल होता है और कुछ हफ्तों बाद लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन शंकर महादेवन का म्यूजिक इस साइकिल से अलग है। उनके गाने सिर्फ चार्ट्स के लिए नहीं बने, वो दिलों के लिए बने हैं। इसीलिए कल होना हो आज भी उतना ही इमोशनल लगता है जितना पहले लगता था, और इसीलिए मितवा आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना पहले लगता था, और इसीलिए उनकी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस आज भी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। सबसे खास बात ये है कि इतनी सक्सेस के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में ह्यूमिलिटी दिखती है। ना एरोगेंस, ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना अटेंशन के लिए ड्रामा, बस म्यूजिक। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें

सिर्फ एक सिंगर नहीं मानते, वो एक टीचर हैं, एक कंपोजर हैं, एक परफॉर्मर हैं और सबसे बढ़कर एक इंस्पिरेशन हैं। आज अगर इंडियन म्यूजिक की कहानी लिखी जाए तो शंकर महादेवन का चैप्टर सिर्फ उनके गानों के बारे में नहीं होगा, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पैशन के बारे में होगा। कुछ लोग गाने गाते हैं और कुछ लोग आवाज के जरिए यादें बना देते हैं। शंकर महादेवन ने सिर्फ सुर नहीं दिए, उन्होंने दिए इमोशंस, और शायद इसीलिए जब भी उनकी आवाज सुनाई देती है लगता है जैसे म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है। तो ये थी कहानी शंकर महादेवन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें टेक्स्ट करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आगे आप किस सेलिब्रिटी की कहानी सुनना चाहते हैं बताइएगा जरूर हमें मैसेज पे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मिल जाएंगे, आप लोग उधर जाइए हमें मैसेज भेजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए एंड मुझे दीजिए इजाजत। मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

कभी कभी लाइफ ना सीधे आंसर्स नहीं देती, वो सिर्फ एक सिचुएशन हमें देके छोड़ जाती है और बोलती है अब डिसाइड तुम करो भाई, और वही डिसीजन जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देता है या फिर भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। खैर, इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ आपकी गीत। और आज जो कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ वो किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, वो किसी करोड़ अरब के बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक फैसले की। सो वेलकम टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं यहाँ उन लोगों की बात करती हूँ जिन्हें दुनिया आज सक्सेसफुल कहती है, लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे शुरू के फेज में सिर्फ कन्फ्यूजन देखा था, सिर्फ फियर, सिर्फ अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनप्लग्ड एक ऐसा शो है जहां सक्सेस को सेलिब्रेट करने से पहले हम स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब हमें पता हो उसके पहले क्या क्या टूटा था। वो मोमेंट जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी से हाँ बोल के नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ दरवाजे के हैंडल पर था पर दरवाजा अभी खुला नहीं, अगला कदम क्या होगा, वो दरवाजा खुलेगा या बंद रहेगा, और जो डिसीजन लिया गया क्या वो सही साबित होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा मेरे शो में जिसका नाम है बिजनेस अनप्लग्ड। अगले लिंक में उस कदम के बाद की कहानी बताऊंगी जहां सोच सिर्फ अपनी नहीं रहेगी बल्कि पहली बार हकीकत से टकराएगी। सो स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत. और कभी आपने सोचा है कि देश का बिजनेस बैकबोन बनता कैसे है? फैक्ट्रीज से, ब्रांड से नहीं, बल्कि लोगों की जिद से. और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम लेने से पहले थोड़ा सा रुकना जरूरी लगता है. इसलिए नहीं कि नाम थोड़ा मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि नाम के साथ वक्त जुड़ा हुआ है. आज मैं बात करने वाली हूँ घनश्याम दास बिरला के बारे में, यानी कि जीडी बिरला. ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का नाम नहीं है, ये एक दौर का नाम है. वो दौर जब इंडिया अपनी पहचान ढूंढ रहा था और कुछ लोग सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे देश का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे. जीडी बिरला किसी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं रहे, किसी ओवरनाइट सक्सेस का एग्जांपल नहीं. वो उस जेनरेशन से आते हैं जहां चीजें धीरे बनती थी पर गहरी बनती थी. और आज जब हम बिरला ग्रुप बोलते हैं ना तो लोग कंपनीज देखते हैं, पर मैं आज कंपनीज की बात नहीं कर रही. मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की जब बिरला एक जिम्मेदारी थी, ब्रांड नहीं. जीडी बिरला ने बिजनेस एक ऐसे वक्त में शुरू किया था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, पर उस सिस्टम में इंडियन बिजनेसमैन को सिर्फ एक रोल दिया गया था, सप्लायर्स का. डिसीजन लेने का हक वो उनके लिए नहीं था, पर जीडी बिरला ने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो इंडस्ट्री भी इंडियन होनी चाहिए और कंट्रोल भी. ये सोच आज सिंपल लग सकती है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था. उनके सामने सिर्फ बिजनेस चैलेंजेस नहीं थे, उनके सामने सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स का डाउट, परमिशंस का डिले और हर कदम पर ये फीलिंग कि आप आउटसाइडर हो. और यहीं से उनके स्ट्रगल की असली कहानी शुरू होती है. न सिर्फ पैसे कमाने की स्ट्रगल बल्कि इज्जत के लिए स्ट्रगल. जीडी बिरला ने अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की अपनी टर्म्स पे नहीं, सिस्टम के बीच रहकर. और हर स्टेप पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडियन एंटरप्रेन्योर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, लीडर्स भी हो सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते गए प्रेशर भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सिंबल बन रहे थे. और जब आप सिंबल बन जाते हो ना तो आपको चूज करना पड़ता है, चुप रहना है या स्टैंड लेना है. और जीडी बिरला के सामने एक ऐसा डिसीजन आने वाला था जो सिर्फ उनके बिजनेस को नहीं बल्कि उनके पूरे सफर को डिफाइन करता है. आज मैं कहानी को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि अगला कदम सिर्फ बिजनेस का नहीं है, वो कदम ब्रिटिश सिस्टम के सामने सीधा खड़े होने का है. वो कदम लिया गया या फिर रोका गया, और उसके बाद क्या जीडी बिरला का रास्ता और मुश्किल हो गया, ये सब आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद इस गाने के बाद. तो गाना सुनिए, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged और मैं बात कर रही हूँ GD बिरला के बारे में। कभी कभी ना जब इंसान के डिसीजन बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है ये सब अचानक हुआ होगा, पर सच ये है कोई भी बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं बचपन में ही तय हो जाता है, क्यों है ना। और आज मैं GD बिरला के उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जहाँ से उनकी सोच ने शेप लेना शुरू किया था। वैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बचपन के बारे में बात करना भी तो जरूरी है ना दोस्त। वो वक्त जब उनके पास पावर नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। घनश्याम दास बिरला जी का बचपन किसी पैलेस में नहीं गुजरा, ना ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्फर्ट था। वो एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आए जहाँ पैसा इम्पोर्टेंट था, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। उनके घर में बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं माना जाता था, बल्कि बिजनेस एक जिम्मेदारी था, एक वर्क था, और ये चीज उनके दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई। उनकी एडुकेशन भी सिर्फ डिग्री तक लिमिटेड नहीं रही, वो चीजों को देखते थे, लोगों की सुनते थे और फिर क्वाइटली अपना कंक्लूजन बना लेते थे। GD बिरला ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ मेहनत से ही नहीं चलती, दुनिया पावर स्ट्रक्चर से चलती है। और ब्रिटिश इंडिया में पावर का मतलब था कंट्रोल, कौन डिसाइड करेगा, कौन रूल बनाएगा और कौन सिर्फ फॉलो करेगा। ये सवाल उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेसमैन के नहीं, एक इंडियन के तौर पर भी उठ रहे थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब वो सिर्फ मार्केट नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम भी देख रहे थे। और जब सिस्टम को आप समझ लेते हो ना, तब उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर पाते हो। और यहीं से हम उस मोमेंट के पास आ जाते हैं जहां पिछले लिंक में हम रुक गए थे। GD बिरला के सामने एक चॉइस खड़ी थी, एक तरफ था चुप रहकर ग्रो करना स्लोली सेफली, दूसरी तरफ था बोलना, स्टैंड लेना और कंसीक्वेंसेस फेस करना। और ये चॉइस सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये चॉइस थी आइडेंटिटी की। क्योंकि अगर वो चुप रहते तो शायद उनका बिजनेस चल जाता, पर उनकी सोच वहीं रुक जाती, और अगर वो बोलते तो रिस्क था कि सिस्टम उन्हें टॉलरेट ना करे, परमिशन डिले हो जाए, प्रोजेक्ट अटक जाए और प्रेशर बढ़ जाए। इस डिसीजन के वक्त उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, वो वैल्यूज जो बचपन से उनके साथ थी, वैल्यूज जो उन्होंने घर से सीखी थी, एडुकेशन से समझी थी और एक्सपीरियंस से और स्ट्रांग हुई थी। और फिर उन्होंने वो किया जो उस दौर में बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पिक्चर के लिए सोचा, पर इसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आए, एक्चुअली इसके रिजल्ट सबसे पहले उनके खिलाफ गए। और यहीं से GD बिरला के फेस का सबसे अनकंफर्टेबल फेस शुरू हुआ, वो फेस जहां प्रिंसिपल्स और प्रोग्रेस टकरा जाते हैं। आज मैं इस कहानी को इसी पॉइंट पर रोक रही हूं, क्योंकि अगला लिंक सिर्फ स्ट्रगल नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जब आप सही होते हो तब भी सिस्टम आपको कितना टेस्ट करता है। क्योंकि GD बिरला का स्टैंड उनके बिजनेस को स्लो कर गया, फिर उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग कर गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तब तक आप सुनते रहिए बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास कापे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

सिस्टम ने उन्हें रोका नहीं, बस इतना किया कि को इग्नोर करने वाले लोगों में से नहीं थे। इन्होंने बोलना कम कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और ये साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं था, ये साइलेंस उनके डिसीजंस में भी आ गया। इस फेज में इनके सामने एक टेंशन नहीं थी, इनके सामने जिम्मेदारियों की एक पूरी लाइन खड़ी थी। वो लोग जो उनके फैक्ट्रीज पर काम करते थे, वो फैमिलीज जो इनडायरेक्टली उनके हर डिसीजन से जुड़ी हुई थी। जीटी बिरला के लिए ये कभी सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, इसीलिए जब सिस्टम इन्हें प्रेशर में ला रहा था तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं सोच रहे थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे। और इसी बीच उनके

क्या कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी घंटी की आवाज और अचानक से हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। मंदिर की घंटी हो, स्कूल की घंटी हो, या फिर बचपन की साइकिल की टन टन, घंटी सिर्फ आवाज नहीं करती, वो यादें जगा देती हैं। वो कहा है कि कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में संभाल कर रख दी जाती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो सदियों से हमारी जिंदगी में बच रही है, लेकिन शायद हमने उसकी कहानी कभी नहीं सुनी। तो आज बात कर रहे हैं घंटी की कहानी की। तो आइए चलिए जानते हैं कितनी पुरानी है ये कहानी। आज से हजारों साल पहले, जब मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तब आवाज ही सबसे बड़ा संदेश हुआ करती थी, और इसी आवाज का सबसे भरोसेमंद साथी था घंटी। पुराने भारत में मंदिरों, राजमहलों और गांवों में अलग अलग तरह की घंटियां इस्तेमाल की जाती थी, लोगों को बुलाने के लिए, समय बताने के लिए।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम बात कर रहे हैं बरसों पुरानी घंटी के बारे में, तो चलिए फिर जानते हैं मंदिर की घंटी का रहस्य। सबसे पहले बात करें कि आखिर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे खूबसूरत सोच भी है। माना जाता है कि घंटी की गूंज मन को वर्तमान में ले जाती है। जो फिक्र कल की थी वो कुछ पल के लिए रुक जाती है और बस एक ध्वनि रह जाती है। वो कहा है कि कभी कभी सुकून किसी जगह में नहीं, बस एक आवाज में मिल जाता है। और यही रीजन है कि गांव की सुबह का घंटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक वक्त था जब गांव की सुबह अलार्म से नहीं, घंटी से खुलती थी। गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज से खुलती थी। दूर खेत की तरफ जाते हुए पशु और उनके साथ बजती छोटी छोटी घंटियां, वो आवाज गांव की पहचान हुआ करती थी। और आज भी कई गांव में ये सुरीली परंपरा जिंदा है। और सिर्फ इतना कनेक्शन नहीं है घंटी का हमारी जिंदगी में, स्कूल की घंटी जो आज भी बचपन याद दिला दे, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वापस आकर तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की यानी घंटी की। तो आइए चलिए जानते हैं कि स्कूल की घंटी और बचपन का क्या कनेक्शन है। अब बात पूछूं कि स्कूल की सबसे प्यारी आवाज कौन सी थी, टीचर की या फिर लंच ब्रेक वाली घंटी की? तो आवाज आती है लंच ब्रेक वाली घंटी, यानी ये घंटी बजती थी और पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। लंच बॉक्स खुलते थे, मैदान भर जाता था और लगता था दुनिया की सबसे बड़ी आजादी मिल गई हो। वो कहा है कि बचपन में कुछ खुशियां बहुत सस्ती थी, एक घंटी और पूरा चेहरा मुस्कुरा देता था। और इतना ही नहीं, घंटी की आवाज याद दिलाती है साइकिल की टन टन। साइकिल और घंटी का रिश्ता भी कमाल का है। पुरानी गलियों में दूध वाला, अखबार वाला या फिर कोई दोस्त, सबकी पहचान उनकी साइकिल की घंटी से होती थी। दूर से टनटन सुनते ही पता चल जाता था कौन आ रहा है। और आज हॉर्न ज्यादा है पर उस टनटन जैसा अपनापन कहाँ। और ये सफर सिर्फ लंच ब्रेक तक नहीं, राजमहल से मंदिर तक जा पहुंचा, जहाँ पुराने समय में राजमहल में भी बड़ी बड़ी घंटियां हुआ करती थी। सभा शुरू होने पर किसी इम्पोर्टेंट घोषणा के समय या किसी उत्सव की शुरुआत में घंटी हमेशा बजाई जाती थी। ये एक आवाज और पूरे महल को पता चल जाता था कि कुछ खास होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये आवाज अपने साथ बहुत सारे किस्से कहानियां लाई है, जिसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से, वो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं घंटी के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं आखिर घंटी हमें क्या सिखाती है। अब बात करें इस घंटी की, तो सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो बजती है, गूंजती है और फिर खामोश हो जाती है, लेकिन इसकी आवाज फिर भी कुछ देर तक हवा में रहती है, बिल्कुल अच्छे लोगों की तरह जो चले जाते हैं पर उनकी बातें और यादें साथ रह जाती हैं। वो कहा है कि आवाज रुक जाती है मगर असर नहीं रुकता। साथ ही ये घंटी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरी बात सबसे छोटी आवाज कह जाती है। मंदिर में हो, स्कूल में हो या बचपन की किसी गली में, घंटी सिर्फ बजती नहीं वक्त को जगा देती है। वो कहा है कि ना उसके पास शब्द होते हैं ना कोई जबां होती है, फिर भी एक घंटी कभी कभी पूरा एहसास बयां कर देती है। और आज कहीं घंटी की आवाज सुनो तो सिर्फ सुनना मत, उसके साथ जुड़ी अपनी कोई याद भी जरूर ढूंढना। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और साधारण सी चीज में छुपी एक असाधारण कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों

0: जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको
1: बताइएगा।
0: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं कृपया।

मुझे ऐसा लगता है कि आज के शो की शुरुआत होगी तो एक छोटी सी बुरी खबर के साथ। बुरी किसी लोगों के लिए हो सकती है और कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है। क्या है वो खबर? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सुबह से लेकर अभी शाम तक बादल ही छाए हुए हैं, बारिश के नामो निशान नहीं है। और पता है कल बारिश आई थी नोएडा में, कल बारिश आई थी दिल्ली के कुछ हिस्सों में, मगर कल बारिश नहीं आई फरीदाबाद में। आई डोंट नो क्या दुश्मनी है फरीदाबाद की इंद्रदेव से। चलिए खैर, मैं आ चुका हूँ। 3 घंटों के लिए आप सभी के साथ बातें होने वाली है खूब सारी। और अगर आप लोगों को भी उससे बातें करनी है तो मेरा एक नंबर है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ पता क्या, आपको आईफोन महंगा होने वाला है, ये थी बुरी खबर। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है। एंड अब गूगल भी एडवांस हो चुका है और गूगल कह रहा है कि कैप्चा के लिए वो टैक्स नहीं देगा। काफ़ी बार होता है ना, वो बोलते हैं कि प्रूफ दैट यू आर ह्यूमन, अपने आप को ह्यूमन प्रूफ करो या प्रूफ दैट यू आर नॉट अ रोबोट, तो उसमें कुछ नंबर्स लिखे आते हैं जो हमें टाइप करने होते हैं। अब गूगल कह रहा है कि हाथ मिलाना होगा। कैसे मिलाओगे आप लोग हाथ, करेंगे इसके बारे में बात। और इसी के साथ साथ एक नई फिल्म आ रही है इक्का। अब ये इक्का क्या चीज है, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। और इसी में दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक सारी बातें आप सभी के साथ होती रहेंगी मेरे दोस्त। तो इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है, नंबर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिनको नंबर याद नहीं हुआ उनको फिर से बता देता हूँ, 9654896896, सिंपल सा नंबर है। आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग हमें। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आपके लिए एक से बढ़कर एक गाने चलेंगे। हाँ, सच बता रहा हूँ, एक से बढ़कर एक चलेंगे। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मेरा दिल सिर्फ एक ही चीज ले जा सकती है और वो है आसमान में आते हुए बादल और बारिश, जो कि हो ही नहीं रही है। याद है ना वो फिल्म लगान, जब वो बारिश के लिए इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते रह गए, फिर उसके बाद बादलों के आते ही नाचना भी शुरू कर दिया, और जैसे ही बादल आए और उन्होंने नाचना शुरू किया, इंद्र ने बोला अरे मेरे तो कुछ और प्लान्स हैं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तो वहाँ से बादल चले गए। ऐसा ही आज भी हुआ, सुबह से बादल लगे हुए थे एंड आई वॉज वंडरिंग के अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, मगर बारिश नहीं हुई। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड नाउ इट इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग, लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि बारिश सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद में नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके दोस्त नोएडा में रहते हैं तो उनसे पूछिएगा, कल नोएडा में बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, और फिर उसके साथ साथ दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है, मगर फरीदाबाद में बारिश नहीं हुई है। और रात के 3:30 करीब हल्के फुल्के छींटे पड़े फरीदाबाद में, जो कि सिर्फ गाड़ी गंदी करने के लिए आए थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और खैर अभी मैं आप सभी के साथ जो बात कर रहा हूँ वो ये कि कहा जा रहा है कि कल से आगमन हो जाएगा मॉनसून का, ये मॉनसून के ही बादल हैं, प्री शावर्स होंगे अभी पहले, फिर उसके बाद मॉनसून अच्छे से दस्तक दे देगा। बट अब वेट ही कर रहे हैं हम लोग, आ तो रही है नहीं। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो यूरोप में कुछ ऐसा हाल है, ऐसा माहौल है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। वहाँ पर 35-40 डिग्री में ही रोड गलनी शुरू हो गई है, टायर्स गलने शुरू हो गए हैं, ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, वो तक गलनी शुरू हो गई है। यार यहाँ मुझे कुछ डाउट हो रहा है, डाउट ये हो रहा है कि 40 डिग्री तो दिल्ली एनसीआर में भी होता है, क्या हम लोग इतना ज़्यादा ढल चुके हैं या फिर उधर कुछ और ही ज़्यादा टेम्परेचर है? तो ये तो क्वेश्चनेबल चीज़ है, तो मुझे लगता है हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। खैर इसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी देखो फरीदाबाद के बारे में बात करेंगे और मॉनसून का इंतजार करेंगे। यहीं पर मॉनसून आते ही एक चीज़ होगी और उसे कहते हैं पोल्यूशन कम हो जाएगा, तो वो एक अच्छी बात है। खैर अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप लोगों के लिए गाने चलाऊंगा। वापस आकर बात करते हैं उस बुरी खबर की जिसके बारे में कर रहा था स्टार्टिंग में। कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, मतलब कि कुछ पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है। कैसे बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। ऐसा मैं भी कहता हूँ कि कोई जाए, मतलब कोई दुबई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। दुबई जा रहे हो तो फिर मेरे लिए आईफोन ले आना, सस्ता पड़ेगा वहां से। मगर अब ऐसा नहीं है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और ये बुरी खबर थी जो मैं बताना चाह रहा था बहुत देर से आप सभी को। तो रिपोर्ट कह रही है कि अब आईफोन महंगे होने वाले हैं, 35,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं आईफोन। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं अभी कुछ टाइम पहले ही एप्पल ने बोला कि बहुत टाइम हो गया हम लोग कस्टमर से पैसे नहीं ले रहे थे, अब मगर चिप महंगी हो गई है तो अब हम लोगों को अपने आइटम्स महंगे करने पड़ेंगे। तो 1,00,000 रुपये तक महंगे कर दिए गए थे उनके सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि अपना टैबलेट महंगा कर दिया गया था, मैक मिनी महंगा कर दिया गया था, मैक के लैपटॉप्स महंगे कर दिए गए थे। बट अब कहा जा रहा है कि आईफोन भी महंगा कर देंगे। तो आईफोन की जो आने वाली सीरीज है, मतलब 17 सीरीज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। देखो अभी वैसे आईफोन 17 कितने का है, 82,000 या 83,000 का मिल रहा है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो वो करीब करीब 1,50,000 रुपये का मिल रहा है, और उसकी कीमत अब बढ़कर हो सकती है 2,00,000 रुपये। एंड आई एम नॉट जोकिंग। अब बता दूं आपको, जो आईफोन 17 है इसके रेट बढ़ सकते हैं, 94,000 तक इसके रेट पहुंच सकते हैं। तो जितने भी लोग आईफोन यूज़र्स हैं, जिन्होंने ले लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है और सोच रहे बाद में लेंगे, तो समझ लो कि अब आपकी ईएमआई भी महंगी होने वाली है। और फिर लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, और जैसे ही आईफोन आता सब लोग मेरे दोस्त भी सब लोग आईफोन के लिए दौड़ लगा देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, आईफोन एक स्टाइल स्टेटस बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। खैर रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, और हाँ जब आईफोन की बात आई है तो फिर गूगल की भी बात आएगी, क्योंकि गूगल ने एक नया टेक्नोलॉजी निकाली है। क्या है टेक्नोलॉजी, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस करने के बाद रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना ब्राउन मुंडे एपी ढिल्लों की आवाज में। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा।

अक्सर गूगल हमसे पूछा करता है प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट। फिर मन में सवाल आता है कि हम तो रोबोट तो है ही नहीं, फिर ये गूगल हमसे पूछ क्यों रहा है, मतलब उसको क्यों कंफर्म करना है कि यू आर नॉट अ रोबोट। आप लोगों के साथ भी काफ़ी बार ऐसा होगा जब हम लोग लॉगिन करते हैं फिर उसके बाद एक कैप्चा आता है, नीचे कुछ टेक्स्ट होता है या फिर नंबर्स होते हैं, उसको हमें डालना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब गूगल ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाल दी है, उन्होंने रीकैप्चा के लिए वेरिफिकेशन का तरीका चेंज कर दिया है, चेंज करने वाले मतलब करने ही दिया है, और ये करते हुए उन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है अब आप लोगों को हैंडशेक करना होगा। हैंडशेक कैसे कर सकते हैं यार गूगल के साथ, मैं बता दूं कैसे कर सकते हैं। आपको अपने कैमरे का एक्सेस देना पड़ेगा और फिर आपको कैमरे के आगे अपना हाथ हिलाना पड़ेगा, हाथ हिलाने को भी तो हैंडशेक ही कहते हैं। और खैर अगर मेरा दोस्त जिसका नाम अभी है वो कैमरे के आगे हाथ हिलाएगा तो उसको अभिषेक बोलेंगे क्या? खैर ये देख बहुत छोटा सा गंदा सा जोक था, पीजे कहते जैसे। खैर ये जोक से अपार्ट वापस आते हैं, इसमें क्या होगा अब गूगल ने हैंड लैंडमार्क डेटा स्टार्ट करेगी और उसमें आपके ना मतलब टोटल 21 पॉइंट्स होंगे, जैसे कि आप हाथ हिलाओगे, आप अपना पंच बनाओगे, नकल्स दिखाओगे और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। गूगल बोलेगा आपको सिर्फ 2 बना के दिखाओ अपने हाथ से, मतलब आपको 2 उंगलियां उठानी है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ कोई रोबोट एंट्री नहीं कर रहा है, कोई बॉट नहीं है जो आपकी प्रोफाइल के अंदर लॉगिन कर रहा है। अब मुझे ये सिक्योरिटी सिस्टम समझ नहीं आता, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों तक छोड़ दूं, मतलब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं और छोड़ दूं। और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी की अगर बात आई है तो फिर व्हाट्सएप कैसे पीछे हट सकता है? तो व्हाट्सएप ने ऐसा बोला है कि देखो आप अब एक काम कर सकते हो, आप अपना नंबर बिना दिए आप लोगों से बात कर सकते हो, मतलब आप लोगों से बात भी कर लोगे और फिर भी उनके पास आपका नंबर नहीं पहुंचेगा और व्हाट्सएप पर ही बात करोगे। कैसे करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभार कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर हम चाहते हैं यार जिस इंसान को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास हमारा नंबर ना जाए, बट व्हाट्सएप से जब कर रहे हैं तो नंबर तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। बट अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि व्हाट्सएप अब आपको एक फीचर देने वाला है जिसमें आप अपना यूजर नेम रिजर्व कर सकते हो। जैसे कि यूज़र नेम होता है ना हमारा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, तो उसके अलावा कोई और वो यूज़र नेम यूज़ नहीं कर सकता, तो अब आप लोग भी अपना यूज़र नेम रिजर्व कर सकते हो और फिर उसके बाद आप किसी से भी बात करोगे तो उसके पास आपका नंबर नहीं पहुंचेगा, आपका सिर्फ यूज़र नेम जाएगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। तो एक्चुअली मैं ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग अपना यूजर नेम चुनो ताकि जब भी आप किसी से बात करो ना तो आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करने से बच सकते हो। और इसके लिए करना क्या होगा, मैं देखो अभी आया नहीं है सबके लिए, अभी बीटा यूज़र्स के लिए आ गया, बट अभी सारे पब्लिक के लिए ये फीचर आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा तो आप लोग यूज़ ज़रूर करना। और कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ, आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर यूज़र नेम पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अपना पसंद का यूज़र नेम रिजर्व करना है। अब पसंद का यूज़र नेम देखो, मान के लो मेरा नाम गौरव है, तो मैं अगर गौरव लिखूँगा ऑब्वियसली बात है गौरव नाम तो रिजर्व होगा नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों गौरव होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नंबर वंबर लगाऊंगा आगे और पीछे तो फिर मेरा नाम रिजर्व हो जाएगा। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। ऐसी और भी बातें करेंगे और वापस आकर बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो गन्ने का जूस तो बेच रहा है मगर उसकी जो स्ट्रेटेजी ना बेचने की वो बड़ी कमाल की है। कैसे करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, आइए इधर चले आइए।
1: मगर काफी बार ना मैंने देखा है कि जब गन्ने का जूस पीने जाते हैं ना, फिर वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि गन्ने का जूस जब निकल रहा है वो बर्फ के ऊपर पड़ रहा है, और वो फिर 50-50 प्रोपोर्शन हो जाता है। लाइक 50% आपको गन्ने का जूस मिलता है और 50% आपको पानी मिलता है ठंडा वाला। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और अभी मैं जो बात करना चाहता हूं वो बात करना चाहता हूं बिजनेस स्ट्रेटजी की, जो एक गन्ने के जूस वाले ने अपनाई है। और इसे देसी दिमाग कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि अच्छे से अच्छे डिग्री वालों की भी डिग्री धरी की धरी रह गई और लिंक्डइन पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ, देखो यूनिट इकोनॉमिक्स पता है आप लोगों को क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था और मुझे इसका ये पोस्ट देखने के बाद बहुत कुछ समझ आया। एक्चुअली मैं ये गन्ने वाला पता है क्या कर रहा है, जूस बना रहा है और कह रहा है अगर आपको विदाउट आइस चाहिए ना तो मैं 30 रुपए का बेचूंगा, 30 रुपए का एक गिलास जो कि नॉर्मल प्राइस है, मगर अगर आपको बर्फ के साथ चाहिए तो फिर मैं आपको 25 रुपए का बेचूंगा। समझ रहे हो, मतलब बर्फ के साथ जब आप लोग पीते हो गन्ने का जूस तो समझ लो आपको 50% गन्ने का जूस मिल रहा है और 50% पानी मिल रहा है। इतनी तो गर्मी हो रही है कि बर्फ भी पिघलेगी और फिर उसके ऊपर जब गन्ने का जूस पड़ेगा तो वो और भी पिघलेगा। तो इस इंसान ने लगाई है अच्छी वाली स्ट्रेटजी, 30 रुपए का फुल ग्लास और 25 रुपए का ग्लास जिसमें आपको बर्फ चाहिए और इसके अलावा हाफ ग्लास 20 रुपए का। तो अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं यार जब हम लोग 20 रुपए का ग्लास पी ही रहे हैं तो हम 25 रुपए ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए इनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो ऐसे ही सेल्स बढ़ा रहा है एक और आदमी जो बेच रहा है जामुन, और जामुन बेचकर वो दिन में कितने कमा रहा है करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना जो कि है मिक्स मैशअप ऑफ जाइए सजना एंड मन हटके, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

जब भी आपको कोई इंसान आके बोले कि तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, तो उसको सिंपल सा एक जवाब देना कि तू आके देख ले। हाँ, सिंपल सा ये जवाब देना है, क्योंकि देखो हर इंसान को लगता है कि दूसरी लाइफ अच्छी है, मतलब दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा ही लगता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और अभी मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की जिसने जामुन बेचकर दिन के 3,000 रुपए कमा के दिखाए हैं। दिन के 3,000 रुपए मतलब महीने के 90,000 रुपए बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जामुन बेच के। अप डाउन मान सकते हैं हम लोग, तो मान लेते 70,000 रुपए महीना तो कमाई लेगा जामुन बेच के। एक्चुअली में क्या हुआ, ये एक लड़का है, कंटेंट क्रिएटर है, इसने एक ठेला रेंट पे लिया और ठेला रेंट पे लेने के बाद इसने 6,000 रुपए के जामुन खरीदे दिल्ली के आजादपुर मंडी से, और फिर एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर वीडियो पूरा बनाया और इसने सारे के सारे जामुन बेचे, मतलब थोड़े से अभी भी बचे थे, स्टिल इसने 9,000 रुपए के जामुन बेच दिए। 6,000 रुपए के जामुन आए और वही जो 300-400 रुपए की जो रेडी होती है वो रेंट पे मिली, और फिर उसके बाद 9,000 रुपए इसने कमाए और उसके बावजूद इसके पास जामुन बचे थे। तो सोचो जरा, अगर एक दिन में जामुन बेचकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। मतलब देखो, काम की कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। खैर, मैं जो ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो देखो सोशल एक्सपेरिमेंट था, जरूरी नहीं है कि हर बार इतना ही पैसा कमाया जा सके। तो प्लीज आप लोग इन चीजों से इन्फ्लुएंस मत होना, बस आप लोगों के लिए बस शेयर कर रहा था ताकि आप लोग भी समझ सको कि हाँ, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चलेंगे और गानों के साथ साथ मैं भी वापस आऊंगा बस थोड़ी देर में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बादशाह एंड करण औजला, ये दोनों की आवाज में था ये गाना। और जब इन दोनों की बात आती है तो फिर जैस्मिन सैंडल्स की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अभी रिसेंटली जैस्मिन सैंडल्स ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी जगहों पर टूर कर रही हैं और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रही हैं। मगर जैसे ही वो पहुंची हैदराबाद कॉन्सर्ट में, तो वहाँ पर लोग हो गए बेकाबू, लोग गुस्सा हो गए, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैदराबाद कॉन्सर्ट में वो पहुंची थी लेट। आधा घंटा नहीं, एक घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, ढाई घंटे नहीं, पूरे के पूरे 3 घंटे लेट पहुंची थी वो। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराज़गी जताई है अपनी। अब लोगों का सिंपल सा कहना है कि देखो, आप एक तो लेट आ रहे हो, फिर उसके बाद आप स्टेज से गायब हो जाते हो बिना थैंक यू या सॉरी बोले, अचानक से गायब हो जाते हो। और फिर इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आप एक तो 3 घंटे लेट आए, उसके बाद आपके शो की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी थी जो कि हमने खरीदी, और उसको खरीदने के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि आप आके लिप सिंक कर रही हैं। एक्चुअली लिप सिंकिंग ही हो रहा है आजकल, क्योंकि देखो जो ये परफॉर्मर्स होते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। बट अगेन मैं दोनों तरफ से बात करूँगा, मैं सिर्फ एक तरफ से बात नहीं करूँगा। देखो भले ही जैस्मिन सैंडल्स को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने में परेशानी होती है, नो डाउट हर किसी को, हर एक आर्टिस्ट को परेशानी होती है, बट वहीं पर अगर एक फ़ैन जो उनको सुनने जा रहा है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि हमें लिप सिंकिंग सुनने को मिलेगी। क्योंकि अगर लिप सिंक ही सुनना है तो फिर हम लोग अपने घर पे म्यूज़िक चला के भी सुन सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक बात है जिस पे सारे फैंस उनके नाराज़ हो रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तो 3 घंटे की देरी से आए हैं, फिर आप अगर लिप सिंक करती हो और आखिर में बिना किसी को थैंक यू या सॉरी बोले चले जाते हो, तो ये ऐसे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं एक्स पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो इस पर सब लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है, मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूँगा। नंबर वही है मेरा 9654896।

0: खुशियाँ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आप लोगों को गेस करना है कौन सी मूवी का वो डायलॉग है। Oi, why are you vomiting? What is wrong with you? याद आया, अक्षय खन्ना को बोला जा रहा था सनी देओल के थ्रू, यानी कि बॉर्डर फिल्म का ये डायलॉग है। और मैं बॉर्डर की बात नहीं करने वाला, बट मैं इन दो एक्टर्स की जरूर बात करूंगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक्चुअली मैं सनी देओल, और वो जब लॉयर बनकर आते हैं, फिर आप लोगों को शायद एक ही डायलॉग याद आएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब। मैं, अच्छा मेरी आवाज़ में नहीं लगेगा आप लोगों को कि सनी देओल की आवाज़ है, मगर हाँ आप सनी देओल को आप लोग फिर से देख सकते हो कोर्टरूम ड्रामा में। और मूवी आ रही है जिसका नाम है इक्का। अब मैं इस मूवी की बात इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करता नहीं हूँ, सिर्फ स्पेशल वंस की। देखो सबसे पहले तो सनी देओल है द एंग्री मैन, तो एंग्री मैन फिर से एंग्री बन कर आ रहे हैं, और उनके साथ है अक्षय खन्ना ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर उन दोनों की स्टार्टिंग में तो दोस्ती दिखी जैसे ट्रेलर में, और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस सा दिखा। और इसमें दिया मिर्ज़ा भी हैं और एक और एक्ट्रेस हैं, उनका नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो बेटर है कि मैं प्रोनाउंस सीख कर आऊँ, फिर उसके बाद मैं करूँगा। खैर अभी बता दूँ आपको, फिल्म का नाम है इक्का, 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। कोर्टरूम ड्रामा है ये, जिसमें बहुत कुछ होने वाला है, और 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग भी इसमें है। तो एक बार ट्रेलर ज़रूर देखिएगा। इक्का मीन्स वो जो पत्ता होता है ना ताश का, इक्का, हाँ वही वाला इक्का। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ, गाने का नाम है खामोशी। यहाँ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

रोज रोज एक खबर आती है कि कोई ना कोई साइबर ठगी का शिकार हो गया है, मगर लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, लोग फिर भी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अभी रिसेंटली आज के ही अखबार में एक खबर आई है जहां पर एक लेडी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का, और हुआ क्या था, इंस्टाग्राम पे ऐड आई थी क्योंकि शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब उसे मिल नहीं रही थी। तो ऐसा इंसान हर जगह हाथ पैर मारता है, और फिर शी वॉज अ वल्नरेबल और उसके पर एक ऐड आई, उसके पास एक ऐड आई और जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करा उसने तो फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट हुआ एंड बहुत सारी बातें हुई होंगी। फिर उसके बाद उसके अकाउंट से कट गए ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, तब जाके उसे समझ आया कि हाँ मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। तो जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं उन सभी से ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप लोगों के पास कोई भी ऐड आती है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, तो आप लोगों को उस पर बिलीव करने से पहले 10 बार सोचना है। अगर आप कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं ऑनलाइन तो आप लोग एक काम कीजिए, उस साइट की ऑथेंटिसिटी जानिए। गूगल पे आप डालोगे सब कुछ आ जाएगा, आपके पास जेमिनी है, आपके पास चैट जीपीटी है, वो लोग आपको ऑथेंटिसिटी तक बता देंगे, आप लोगों को बस लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप लोग कुछ मंगा रहे हो एक मतलब किसी ऐसी साइट से जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, तो आपको पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ऐसे और भी अपडेट्स लेकर आता रहूंगा, मगर उससे पहले रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना तलविंदर की आवाज़ में कातिलाना।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली कब मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

बहुत सारे गानों का मिक्स मैशअप था ये। और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। 7:45 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मतलब 7:45, वक्त हो गया यहाँ से जाने का। मगर एक बात बोलना चाहूंगा, आज सुबह से लेकर शाम तक बादल तो आए रहे मगर बारिश नहीं हुई। कल पहले ही बता चुका हूँ कि कल नोएडा में भी बारिश हुई है, दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश हुई थी, मगर फरीदाबाद वालों के साथ तो ऐसा हुआ जैसा लगान मूवी में सबके साथ हुआ था, मतलब उन लोगों के साथ जो हुआ सेम टू सेम फरीदाबाद वालों के साथ भी हुआ था। तो मैं बस यही प्रे करूंगा कि जल्दी से बारिश आ जाए और ये उमस वाली गर्मी से राहत मिल जाए। और इसी के साथ साथ बस ये बोलूंगा, शाम हो गई है, भूख लग पड़ती है सबको, तो मुझे भी लग रही है। मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 8। और इसी वादे के साथ निकलता हूँ, वापस आएगी गीत विदेश कबाजिया, खूब सारी बातें करती है, प्यार भरी गाने लेकर आती है आप लोगों के लिए। और कभी कभार तो मैं भी शो सुनता हूँ उसका, क्योंकि देखो यहाँ से निकलूंगा ना तो गाड़ी में उसका शो सुनते हुए जाऊंगा। तो देखो आसमान में है बादल, अगर बारिश हो गई तो फिर जलेबी लेके जाऊंगा। तो ये गाना भी है जलेबी बेबी टैशर की आवाज में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: कश्यप।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या आखिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्प्रेरी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिया। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती हैं। और जैसे वो हमसे दूर जाता है सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग से ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है। और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए। और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी, ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला।

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे, गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां

शक्ति कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्कबाज़ियाँ। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा। और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत

मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हट के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: हाल कैसा है जनाब का,
5: क्या ख्याल है आपका,
4: तुम तो मचल गए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: सीधा साधा है।
1: बोलो बोलो।
0: अजी लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

तुम्हारे

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े
1: गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: नीरज सरकार।
1: हेलो, थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम।

सियासत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

अरे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

अहमियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: हाथ झुमका
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: करती रहती है। पापा के सवालों में सत्य से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पेड़ हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रिया नहीं टच जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
2: काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलू कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में, भगवान नाम रूपी धन। पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया, काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते, ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है, नाम रूप लीला धाम चारों समान हैं, वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है, यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन, यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें, फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको।